जब मैं तैनात थी छिले इंद्रजना यू में माया रह रहे को हिच से सवाल डाल खच नौश मुगला दिश्मी अल्लाह आज आज आज